ही आकाशवाणी आइजोल ने दार सरी लेमनी सोमली पन्नी अने आ नकिन दार सरी लेमनी सोमली पंगा ख्यान क्लिरवेल न हुन कन मंग हाउदोन अने सुमे माचोन हुन क्लेम कन लनेया कनुन चौ बुलते ला जनथान लियाना अन थ्याम तका सक्केलोंगाई थांगू

प्यारे श्रोता, ये एफ एम जो वॉइस ऑडिशन लव साथ है और मैं हूँ आपकी आरजे सांगपुई। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एफ एम जो वॉइस में। और इस प्रसारण की शुरुआत के लिए सबसे पहला गीत रहेगा शान और श्रिया घोषल की आवाज में, हाँ यही प्यार है। और जी हाँ, इस प्रसारण में हमें हेट स्टोरी, लूट और मिले ना मिले तुम मिले हम फिल्मों से लिया गया गीत सुनने को मिलेंगे। आइए इस गीत के साथ इस प्रसारण की शुरुआत करते हैं। हाँ यही प्यार है, शान और श्रिया घोषल की आवाज में।

अभी जो हमने मस्सा गीत सुना है वो है शान और श्रिया घोषल की आवाज में, हाँ यही प्यार है। यहाँ पे आपके संदेश की ओर बढ़ते हैं। हितेंद्र दास असम से सबसे पहला संदेश आई है। निहानिन, गुड मॉर्निंग आर्य जी। नमस्कार अंतिया जी, आपको भी नमस्ते। हम आशा करते हैं कि आज आप हमारे साथ FM जोए में बने रहेंगे, ठीक है हितेंद्र दास। एलजेट साइलो से संदेश आई है। अनिहन एस पी वो इन सुई ओमले दोन निमो नोमले दोन है मोई तक टोक टोक खा लपले ले रो रंतिया बुलचंद ते पो फुआ लहित तक तक रंती छुआ जेल कन लो तुम दोन ने ओ ये FM जो ओइल लो बेल का टर्निंग जवा खान कन सोम नन ले चोनी एल दिन पु एफएल कॉन्वेंग लाई से संदेश आई है। अनि हन आरजे प्ले ले तुरखा नंगमा तान ले लंगा थवे जोंग जोंग तान ले कछानते वेंग शंग शंग मी ते आरसी या रिन मो या वाल पुया आ सिन सिना अमिया लोमा ते पुया ते तान लल दिन पुया फल कोन वेंग ला हियान रन थन सक पोका अजेल जा मतेन रन लंग बोका हिच नेक्स सा छियार तान कन ल खेक रियांग ओ अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। और यहां पे अगला गीत रहेगा माहे जान, और ये गीजे खास करके लल दिन पुया फल कौन वेंग लाए एल जेट साइलो हितेंद्र दास ले लान रन थन सकता जोंग जोंग अन छियान ते तान खानी से। तो इस गीत का आनंद लेते हैं माहे जान।

happy up kissing day shy he hakte pa bill khatlir se ani han arje sang pe namaste le play le tur kha vi kung te a jelal zam omega sang te a par pari pu itan karan lan ba ke arantia par pari pu te pon thoto tura ngai la dar som ari nai to tro ange la la than hun de kha chu om sia do ma sengin ange semester kha chu in du chan in ron thon the reng ania o अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा वो पहली बार

वो था दिल है तुम्हारा फिल्म से लिया गया गीत दिल है तुम्हारा। और यहाँ पे आपके संदेश आए हैं जेएलएल जाम से अनिहानिन। हेलो बारजे संगपी नमस्ते सुप्रभात वो इंदू तीन वामले अरंतिया बहुत बहुत शुक्रिया। ईरानी जी ने निमिन खा और ड्यूटी का निन खेगा चुवांग छुआन तु कार टॉप लमादे चुआन एफ एम जो वही लमा इनिन तों ले ये तो रहन गाय ला तुरो तई मदे उखान एफ एम जो वही लाय थपट मेला अरन ड्यूटी ले तुर हूं चुके चुआ कसर चुवांग चुआन सेगमेंट दे रन लन छत प्याव चुन वही ना अरन ड्यूटी ले थे तुर हूं खा करुन शिल मामने रम लो तेल लंगा अनि हेन अर जे संग पुई कमन वेता रसुर अनुआम तप इलप ले हौ चुक दु सी लियर रसुर हि चुआन इन किम ति हेन वाम वेल फे का कपूर सार जेल अरन तिया मेंग मोय तेन मेसेज रन टाइप वांग ते पो हि नि थेंग एम ओ तेरो मामन रन मुचिया लो माला एंगे एंगे इनिन मन दे उतलत मो इनवाइट पि इनिन मन दे उतलता और इन पोनी से यहां पे अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। और यहां पे अगला गीत रहेगा बारिश और रुआते सुर पुका चुवांग चुआन इन हेला नैन पोहन वो इन बहु रखते इन में व्यव तो रंगाई ला तो ये इस गीत का आनंद लेते हैं। बारिश हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लेते हैं। और ये गीजे खास करके हाँकते पाबिल खोथली और ले मामनी रम लोटते लाइन रन थन सक तक जोंग जोंग इन छानते नैन वो इन हुन नाम तक इन मन थे इन आन इन तानी से तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

अभी जो हमने मस्त सा गीत सुना है वो है बारिश ओ मामनी रमलो अथिरन लंगा आज संग पे गरिल रु आहला ओम इवन शिथे मैम बारिश छु का दुवे थोतनी जार लाउ थोंग वांगिन का फुर गाय लो शिम शिम बका हरंतिया फुरने दो हिचु ओमलोम तेरो हे ने सेमेस्टर पोरन एंगे इन द द जेल खानरन थिंग बॉक्स यामो चु बांगचन एंगे मनी वाइब हिचु आ ओम वेदे कल थ्लांग दो लखि छु अमनी दरो मिंग मोय तेरन लंगा नि हन लियान सांग नमस्ते ड्यूटी नोम ले रन तिया नेक्स्ट आ हन मिंग मोय ते ते हुन लाइ ला कंगाई थतुर अंगाई ला यहा पे अगला गीत रहेगा धड़कन फिल्म से लिया गया गीत अक्सर इस दुनिया में और ये कीजिए खास करके मिंग मोय ते आपके लिए है।

अभी जो हमने मसा गीत सुना है वो है धड़कन फिल्म से लिया गया गीत अक्सर इस दुनिया में है। और मैं मोई ते खान उलुक तक लोगा इलाकन रिंग दे उंगा था माँ मुनि रम लो थी आनी अर्जे सांग पुई जार लाओ लाओ थोंगा अंगा दोई वांगा लाओ फूर ते चुआ कदू ते लो मैं नो थैंक्स रंती या Elza Tsailo Hyanin, so Misa Song Dua Tile, Nguri Tsailo Tetan, Adot Le Mikhao SP Rontia, Jiha Zarur, Yaha Pyaag Lagi Rohega Dil Hai Tumhara Film Se Liya Gaya Geet, Mohabbat Dil Ka Suku, Aur Ye Ki Che Khas Karke, Elza Tsailo Man, Achyan Tetan Alo Thlan Sak, so Misa Song Dua Ti, Nguri Tsailo Te, Le Tun Huna FM Zawoy Lo Ngai Tha, Tu Zong Zong Te In Zawai Tan Khan Ni Se, To Is Geet Kanan Le Te Hai.

प्यारे श्रोता, समय आ गया है इस प्रसारण के आखिर गीत का और यहाँ पे अगला गीत रहेगा कुछ ना कहो 1942 लव स्टोरी फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लेते हैं और अगले प्रसारण में आपके साथ रहेगी आपकी प्यारी सी आरजे आरजे ते आप सभी के लिए। तो इस गीत का आनंद लेते हैं कुछ ना कहो।

प्यारे श्रोता, ये FM जोर शोर शिमला साथ है और मैं हूँ आपकी आरजे सांगपुई। फिर वापस आप सभी के लिए आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ FM जोर में। और इस प्रसारण में हमें कलेक्शन हिट्स नंबर 1 से लिया गया गीत सुनने को मिलेंगे। इस प्रसारण की शुरुआत के लिए सबसे पहला गीत रहेगा पहला नशा, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लेते हैं।

0: अभी जो हमने सुरीली सी आवाज में गीत सुना है वो है पहला नशा, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से लिया गया गीत है। यहाँ पे आपके संदेश आए हैं टाइम की पर्चे मेकन नया मामुनी रम लोथियानिन आज सांग पुई छुन लुंग लेन हुन छिया मे मे रहु या ना रहु लो प्लेला कंगाई खचा के मे रंतिया tun segment bi ka sms mas ber te ni boka chu wang chuanin kan ti chuak lo phal lo tur han ngai la ti ro uluk tak ni lo ngai thla nga lo chengs pui la i lo chengs pui thei lo ni pon mo mu pa mu pa e mo khanin nge chap lo chau khani lo ngai thak nge tan i tan karan la ne wa tai to is git kanan lete he mer hu ya na rahu amal malik or arman malik dwar git kanan lete he
1: It's complicated.
2: It's simple. Love.
1: Love? आपने भी किया था? Love?
2: था? किया है और हमेशा करता रहूंगा।

0: David!
1: Yes, Mama, coming!
0: Come!
2: वो था मैं रहूँ या ना रहूँ, अमाल मलिक और अरमान मलिक के आवाज में गीत है। यहाँ पे आपके संदेश आए हैं जेलजा मसे अनियानिन आज शाम को इजाज़त है लोजोक। नमस्ते नमस्ते रंतिया जी, आपको भी नमस्ते। वहन शदिक छीन है मित्रो थिल ही तुई शदिक क्लांग पुए मासे ही तुई शे स्वाल दो लेकिन कश्या खोंग आई निरम तिया फल स्वान सोना कितना सोना है खांग आई हविला इतान तेम ले करानी आज भी अली तान सियाल भी ग्रियाकिन एंगे स्माइली इमोजी तो पोही इन खशुंग व्याव से चांग तरो इन एस एम एस ते है इन डॉट डॉन से लिन एंगे करन सियाल छवा सकते बा फेयर टॉक व्याव तुरहन गाय लवी कुंग ते पोही रन लंग लोल मेया मासे nge chiar la chang don ri chia lo a sms chu aron lut lai de la kawang in chu wang chuan in la de po khain du chuan ron thlang ola hi kan ti chua sak zel chu kan lo tum doni yaha pe agla gi tu hega sona kitna sona hai aur ye gi je khas karke jenal zamale a rani ji a rjv elinen nge uluk ta kan lo ngai thakata ni se to is gi kanan lete hain

प्यारे श्रोता, इस समय आ गया है इस प्रसारण के आखिरी गीत का और यहाँ पे अगला गीत रहेगा ना तुम जानो ना हम कहो ना प्यार है फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लेते हैं। यहाँ पे आपके संदेश आए हैं वी कुंगते एस एम एस और कंस्यार लेशा मंगो मैं मोई तेन एन ह्यान कनी नंगछी ना कैनी पनी हिचवान ती छन एम एम कन नहीं गाय लो कन लेर वे लवा मा मुनी रम लो तंग दिन हरंती ने तोबलम पंख चुकन बेल दे मई थे बका हाँ एंकोनी से अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा ना तुम जानो ना हम कंशाद लव सुमो अतोप लम खा थू बल नींग लव ती खा कंश भी क्लत लव नहीं तिर तो इस गीत का आनंद लेते हैं और ये गीचे आप सभी एफएम लिसनर्स के लिए है।

और ये कीजिए, खास करके जेल जामले रानी जी हीरो नंबर वन आरजे वी अली तान खान नी से अनि हियान आरजे एसपी नमस्कार, गुड आफ्टरनून नरंतिया जी आपको भी गुड आफ्टरनून तुआ तकिन हो अंग से नेक्स्ट सॉन्ग इतान सौ अरंतीनी ते मियाल से सॉन्ग जेल जाम आजे भी ली रंती दोन नमक त्या मो मिनुन मिनुन खान सक वे लाउ में अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा कोई मिल गया और ये गीजे खास करके जेल जाम एल जेट साइलाउते हितेंद्र दास आप सभी के लिए है।

प्यारे श्रोता, इस समय आ गया है इस प्रसारण के आखिरी गीत का और यहाँ पे अगला गीत रहेगा के आवाज में प्यार के पल। और मैं हूँ आपके आरजे सांगपुई और इस गीत के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और आप सभी को शुभ दिन।

0: क्षेत्रीय तनाव कम करने और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में G7 नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब यह आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 22 ओवर में 2 विकेट पर 153 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने इस मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, स्वागतम है आप सभी का FM जो वॉइस ऑफ दशमलव 7 पर। मैं हूँ आपकी आरजे अमोइतेई। और ये आज बुधवार की शाम है और इस बहुत ही सुंदर सुनहरी शाम में मैं लाई हूँ लता मंगेशकर, सली चौधरी और अभिजीत सावन के द्वारा गाए गए कुछ गीत। तो दोस्तों, मैं इस खंड की शुरुआत करना चाहूंगी लता मंगेशकर की बहुत बहुत ही सुंदर आवाज में, जिया ना लागे मोरा। चलिए इस बहुत ही सुंदर खूबसूरत

गीत के साथ इस सुंदर शाम की शुरुआत करते हैं। और हाँ, हमारे श्रोताओं को हम निवेदन करते हैं कि अपने प्यारे प्यारे संदेश हमें भेजना मत भूलेगा, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आप हमें सुन रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम को अहमियत देते हैं।

तो दोस्तों, कैसा लगा आपको लता मंगेशकर की बहुत बहुत ही सुंदर और मधुर आवाज? ओ ही अमोय एम एम इंत्र लता मंगेशकर ही जो अचियांग पी खी कतिया। तो संदेश आया है हितेंद्र दास की तरफ से, लिखते हैं हमें। गुड आफ्टरनून आरजे जी। गुड आफ्टरनून हितेंद्र दास, बहुत बहुत दिनों के बाद आपसे बातें हुई हैं। बहुत स्वागतम है आपका, और हम उम्मीद करते हैं आपका संदेश हमें हर खंड में मिलेगा। मिंग मोइते हमें लिखते हैं, मोइते नमस्ते दिवती नुअमले, आपको भी नमस्ते। मिंग मोइते आपका भी मैं हार्दिक स्वागतम करती हूँ। चलिए, अगला गीत जो है अभिजीत सावंत के आवाज में है, बहुत ही सुंदर गीत है, जानम जानम।

नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा आपको अभिजीत सावंत की आवाज? हमको उम्मीद है आप सभी को जरूर जरूर पसंद आया होगा। बढ़ते अगले गीत की और अगला गीत जो मैं सुनाने जा रही हूँ ये भी 90s के है और हाँ बहुत ही प्यारा सॉन्ग गीत है ये। कोई होता जिसको अपना फिल्म है।

कहते हैं ना दोस्तों, जिसका कोई इस दुनिया में नहीं होता उसका खुदा होता है। देखिए, कभी हम अक्सर एकदम लोनली फील करते हैं। ऐसा लगता है कि हम जिंदगी के उस मोड़ में कभी कभी उस घटना का क्या करते हैं कि उस घटना में चले जाते हैं। कोई भी ऐसा घटना घट जाता है हमारी जिंदगी में जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारा अपना अपने साथ नहीं है, कोई सब हमसे रूठे हुए हैं, सब कहाँ चले गए हैं। लेकिन हाँ, ऐसे वक्त में भी अगर कहते हैं ना थोड़ा सा मैं डिवोशनल हो जाऊं तो भगवान सबके साथ होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपके अगले गीत की ओर जाते हैं, लता मंगेशकर की बहुत बहुत ही सुंदर आवाज में, मैं तो पी के नगरिया जाने लगी।

नगरिया जाने लगी, ऐसा कौन सा मोड़ आ गया कि लड़की को पीकर नगरिया में जाने का जाने की जरूरत होने लगी। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते अगले गीत की ओर, भी सावन की आवाज में जाना।

तो दोस्तों आए हैं यहाँ पे आपके संदेश जे रजाम की तरफ से है। हेलो आरजा मोइते नमस्ते गुड इवनिंग नेक्स्ट सुनजम ले जेर तुर ड्यूटी नुआम उल्ले अवन दिख चांग तक एम जे रजाम कन भन लोम छीन तक एम। और ये जो अगला गीत है वो भी हम आपके भी नाम करते हैं। अगला संदेश है मो या मुनपुई की तरफ से लिखते आर्जिया मोते तलाम चिपाई दू तीन वामले मे मोते या वे कुंगते या मूरी साइलो माम हुते ताने नंग माता नरते भन की उठी ने मोया आपके भी नाम करना चाहूंगी। तो दोस्तों आप इस वक्त वक्त बिता रहे अपनी आर्जिया मोती के साथ एफ एम जो सौ दशमलव सात पर। मेरे जाने का वक्त आ गया है इस खंड को अलविदा कहने का। 6:40 में हम वापस आएंगे बहुत बहुत ही सुंदर प्यारे गीतों के साथ। तो आपसे थोड़ी देर बाद अपना वक्त बिताएंगे अपनी आरजे फिरते के साथ बहुत ही सुंदर गीतों के साथ वो आने वाली है। तो जाते जाते एक और गीत अभिजीत सावंत की आवाज में एक जहान।

हेलो नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का FM वॉइस ऑफ दशमलव 7 पर। मैं हूँ आपकी आरजिया मोइते ई, अपनी दूसरी खंड में सभी सभी का स्वागत कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर फिल्मी गीतों के साथ जंगली लव, जंगल लव और सेला फिल्मों के गीत मुझे बहुत बहुत ही पसंद है। इन फिल्मों के गीत तो कैसा है ये हमको आपको सुनाकर ही आपको पता चलेगा कि ये जो दो फिल्में हैं इन फिल्मों के जो गीत है बहुत बहुत ही सुंदर है। और पहला गीत सुनाने जा रही हूँ जंगल लव फिल्म का, अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास के आवाजों में। लैला ने कहा जो मजनू से, लैला ने क्या कहा मजनू से। जी हाँ दोस्तों, इसी अंतर्गत में हम कहना चाहेंगे कि अपने प्यारे प्यारे संदेश हमें भेजना मत भूलिएगा। मुझे लगता है इस वक्त हम सभी की स्थिति एक से जैसा नहीं है। जैसे कि मैं भी स्टूडियो में हूँ तो कोई होंगे अपने दफ्तर में और कई होंगे अपने सफर में और कई मरीज अस्पताल में, हॉस्पिटल में। हाँ, और डॉक्टर्स होंगे, नर्स होंगे, जो भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं आप सभी सभी के नाम। और जो सेनाएं हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, आप सभी सभी के नाम भी करना चाहूंगी।

जिया दोस्तों जो गीत आप सुन रहे लैला ने कहा जो मजनू से अनुराधा पौडवाल मनहर उदास की आवाजों में है और फिल्म है जंगल लव जो कि 1990 का और इन लो तर्जन फिल्म का इन तो खामियांग बेस सियाम खान यह फिल्म नि मु नम गे कबे से और हुन कन नै नि चोन इन लो ला इन बेंगे रु और जंगल लव 1990 अमी खानिया और इसमें स्टारिंग है कीर्ति सिंह शिवा महेश आनंद सतीश शाह गोगा कपूर और रॉकी मुनम गई तो राबी सिंह। ओ चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की और अगला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत ही प्यारा गीत सैला फिल्म का गीत है अनुपमा देश पांडे की आवाज में है उलझी है ये किस जाल में और हमारे पास 7:10 तक का वक्त है तो ज्यादा से ज्यादा गीत सुनाने की कोशिश करूंगी आपको। इसी के साथ आप भी अपने संदेश हमें भेजें ताकि हम जान सके कि आप हमें सुन रहे हैं। जी हाँ तो नहियानिन एफएम जो ओए ही न्यूज ऑन एयर एप्स मंगखानिन अंगाई खाक रंग थे नियो ईयरफोन हेडफोन एंग मंगाई लव खान लव डाउनलोड चुर चुर लाइव रेडियो ngai thadu tan ah itiklai pon ngai khak reng an thei ni

जी हाँ दोस्तों, आप गीत सुन रहे हैं इस वक्त सैलाब फिल्म का, जो कि जो रिलीज हुई थी 31 अगस्त 1990 को। और इस फिल्म में कास्ट किए हैं मेन एक्टर्स है माधुरी दीक्षित और आदित्य पंचोली, साथ में है ओम शिव पुरी, सहिला चड्ढा, सुरेश ओबेरॉय, शफी इनामदार। चलिए दोस्तों, है फिल्म है मिला बेरखेर फिर ही यूट्यूब अखन दो इन वेचिन उलमो सैलाब फिल्म हमको आजकल है इंतजार। माधुरी दीक्षित जो लाम थिया मनी दिखता का सही जान वो अलाम ही मोहिन वाम एम एम ए निखांग हुन लाइप मेल पोट्रा जो आदिन ओ लाम पो अथिया मिन जे एम एम ए मोन अम्नु तुक लो इन वेरू हुनिन नहीं जो आदिन। तो चलिए दोस्तों, हम अपना अगला गीत सुनाने जा रहे हैं आपको। जंगल लव फिल्म का एक और गीत सुनाऊंगी फाल्गुनी सिंह की आवाज में, ही मैन। ओह माय ही मैन, ही मैन का जमाना, ओ ही मैन लड़लाई। तो सुनते हैं हम और आप।

Avan, mooi tap verder. A film po is ये जो फिल्म है ये भी बहुत बहुत ही अच्छा है. बहुत ही अच्छी सीख मिलती है इस फिल्म से. कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा आप भी. चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आपके संदेश की द्वारा के तरफ. हंगते पाबिल खोथिर की तरफ से है, लिखते हैं अर्जा मोइते. नमस्ते नमस्ते. दमलो मे कन्नाउ दु तक वी कुंग ते दम लो लो दम थे ना ले इतान कल हाने अब हन जिया लो वे वी कुंग ते खलो दम वत वत रो से दम लो चुआन इन कन किम लो वनिया ओ ये लो दम वत वत अंग से. तो ये जो गीत हम पेश करने जा रहे हैं ngakte a pa bil kho thlir hian vi kung te ta naron hlan ani. Vi kung te po lo dam song song kan be se. Hitendra Das ka sandesh mila hai. Good evening RJ ji. Good evening Hitendra Das. Ye bhi aapke dabhi naam karte hum. Aur haan jo dosto aap sun rahe hain FM The Voice of the Sun saath, aap waqt बिता रहे इस वक्त अपनी आरजे अमोईती के साथ. तो 7:10 से आप सुनेंगे स्पेशल सीरीज बाय NSD आकाशवाणी ऑन 12 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट. तो 7:45 तक ये चलेगा ये प्रोग्राम. और हम वापस आएंगे अपने चॉइस के गीतों के साथ 8:02 में. कहीं मत जाएगा. तो चलिए दोस्तों, हम सुनते हैं ये गीत दिल का रिश्ता फिल्म ला, जिसमें है ऐश्वर्या राय, अर्जुन रामपाल, प्रियांशु, अलका याग्निक, उदित नारायण के आवाजों में. ओ अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू के आवाजों में.

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का FM ZOISO दशमलव सात पर। मैं हूं आपकी आरजे अमोइते। और दोस्तों, ये जो खंड है हमारा, जिस तरह हमने कहा था कि इस खंड में मैं आपको सुनाने वाली हूं अपने पसंदीदा गीत, तो पहला गीत आप सुन ही चुके हैं, आओ ना। और फिल्म है ये क्यों हो गया ना का, और इसमें कास्ट किया है ऐश्वर्या राय और विवेक ओबेरॉय ने। तो चलिए दोस्तों, हम अपना दूसरा चॉइस आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरा अगला चॉइस जो है, बहुत बहुत ही सुंदर गीत सनम पुरी की आवाज में है ये, तेरी आंखों से, जोनिता गांधी के साथ।

तो ये थी दोस्तों सनम पुरी और जयंता गांधी के आवाजों में, तेरी आंखों से अपनी नजरें हटाऊं कैसे, इन लो से इनकोम थे लो इन रंग में चाहिए कदू नहीं तियांग देव खाने मोला का रोमांटिक रेम रेम ले मैं तेरो तो कैसा लगा आपको मेरा ये चॉइस कसो यंग खानिन है सेगमेंटी का चॉइस लाते कलुंग दुम लाते करंग गई थाक तीर से उनी इन लुंग दुम लाने लो ओ हाकते तो संदेश है हाकते पाबिल कोथलीर की तरफ से, इन्होंने लिखा है अतर मसाजन छिया लो फोट में ओ इतान ले गई थतु तितान कहलाने अरुण तीन ओ मिलो गई थतु जों जों तितान खानिन अरुण लाना नीचू ओ जंजेल जाम हिरन सोल थिया मई मई खोब मो हेलो रंतियार जे विलन टिंग ये पोकाम नमस्ते नमस्ते ओ निले लो ती पलोर जे मोइते वहन सोल थियम तक नेक्स्ट सॉन्ग इतान ने जेम बोकल मम्मी बा समसे न्यांग इतान सियल तुरु इन ओ रंतिया ओ जेम बोकल मम्मी खान लो इन लो गाइ थांग एम ओ गाइ थांग ए तुरा गाइ ओ तो संदेश है ये अगला वहन सुई चिंता के ओ ओमेगा सांग ते तक जो ओ एफएम जो वही कतई पुईता ही सुई चलो मयंग तो कमान लम छिन तक एम रिसेल न था ने हुन मन नाम ने अरन ते ने हन लम ओम छिन तक ओ अगला गी जो मैं पेश करने जा रही हूं ये ओमेगा सांग ते मिंग पो खा दिन करन थंग सियल तो रु ब्रु इन ओ नाक ते पा ते जेल साम ते सफाई तान खान करन लान पो के ओ तो दोस्तों ये गीत है सो गया ये जहां, माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर है इसमें, चंकी पांडे भी है, फिल्म का नाम है तेजाब।

तो जब तक दोस्तों गीत सुनते हैं, जो गीत आपने सुना था जन्नत फिल्म का गीत है जरा सा, इमरान हाशमी है इस फिल्म में। फिल्म लाते ही जो मोई थे तब सोनाली नैनन सन्ना खानिया मो। कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। कैसा लगा आपको के की आवाज़? उम्मीद है आप सभी को जरूर जरूर पसंद आया होगा। और बढ़ते हैं हम अपने अगले गीत की ओर। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अब से थोड़ी देर बाद आप अपना वक्त बिताएंगे अपने आरजे बी सदी के साथ। बहुत ही प्यारे और सुंदर गीत के साथ वो वापस आने वाली है और हमारी और आपसे फिर से बातें होगी 9:30 बजे। 9:30 बजे बहुत बहुत ही सुंदर फिल्मी गीतों के साथ हम वापस आएंगे। कहीं मत जाएगा एक भी गीत आपसे छूट ना जाए, क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे गीत के साथ हम वापस आने वाले हैं। तो अगला गीत इस खंड को अलविदा करने के लिए मैं सुनाने जा रही हूँ काइज फिल्म का गीत है, जिसमें ऋतिक रोशन और बबरा मोरी है और जिंदगी दो पल की काइज फिल्म का गीत है। उससे पहले दल दिन पुया पल कौन वेंग लाई एफ एम आई संकू और एम एम टू के तरफ से है ये संदेश। लिखते आर जे प्ले ले तो खान नंग मा तान ले लौंगाई थवे जोंग जोंग तान ले कठियान दे वेंग संग संग मी ते आर सी आ रिन मोया तुआंग आ मोन जो आ वाल पुया रिन मोया वाल पुया ओ आ चिन चिन आ तिंग आ चिन चिन ओ लोमा ते पुया ते तान अरों तीनी दिन पुया हियान इन ओ और मिंग मोई ते लिखते हैं आर जे तान ले जेल जाम तान रों ती आ और मॉरिस की तरफ से है ये लिखते प्ले ली समय सुंदर सुंदर नगर खा इन आते रो आते अन पुआतिया मैं मैं को इम्पोर्टेंट इसे नेक्स्ट का एक एफ एम जो वो इंगा सतू दे तांग का लाने रों ती बोका मोया है ये लिखते हैं आ मोई कमंचिया ए कमंचिया लो लंगा ले जेल जाम एल जेता साई लो सी जेता एलार मामित रुके हाँ जेल जाम एल जेता साई लो सी जेता एलार मामित तान नंग माता ना बंती नी। बहुत बहुत शुक्रिया मोया। ये जो गीत है मैं ये भी आपके भी नाम करना चाहूंगी। कैसा लगा ये गीत अमोइन ती बैठे हो कभी से ओ जिंदगी दो पल की तम नुन नहीं तो ये एम मैं तेरो इंतकांगे कन्हुन लोग हैं व्यंग ती को आई चांग मन लो हुले किन कन को साथ तेरो मासे इंग हुन पोतों मैं इला हिंते यंग बेरिन तेरो दुमारी रूटीन लोग इन्ले

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का FM जो वॉइस ऑफ द साउंड ऑफ साउथ पर। मैं हूँ आपकी आरजे मोहिते। अपनी आखिरी खंड पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस खंड में मैं लाई हूँ तीन फिल्मों के गीत, जो कि है पाप, बर्फी और आई एम कलाम। तो चलिए दोस्तों, पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं। पाप फिल्म का गीत है ये, और गीत का टाइटल है इंतजार। ये जो गीत है, आप सभी सभी के नाम करना चाहूंगी। जिस तरह पता आप सभी को पता है कि हमारी आखिरी खंड है, तो हम उम्मीद रखते हैं आप सभी से कि आप हमें सुने, अपने प्यारे संदेश हमें भेजिए और अपने विचारों को हमें हम तक पहुंचाएंगे, जिसे हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। चलिए इस गीत के साथ शुरुआत करते हैं, इंतजार।

जब तक गीत सुनते हैं आपके संदेश की ओर मैं ध्यान देना चाहूंगी। हितेंद्र दास असम की तरफ से है ये जो हम लिखते हैं। गुड इवनिंग आरजे जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन हितेंद्र दास, होप यू आर फाइन टू। नमस्कार जी, आकाशवाणी रेडियो स्टेशन आरजे जी रिक्वेस्ट प्रोग्राम शो शो अभी नहीं है क्या? प्लीज स्टार्ट करेगा। फिलहाल नहीं है, फिर भी कोई गीत सुनना चाहो तो जरूर बता दीजिएगा हमें। और लिखते हैं हिंदी सॉन्ग, वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम ऑफ हिंदी सॉन्ग शो डेडिकेटेड, इन्होंने डेडिकेट किए हैं इस गीत को। ऑल आरजेस एंड ऑल स्टाफ मेंबर ऑफ आकाशवाणी परिवार एंड माय फ्रेंड्स आर मिनल, दुर्गेश, शिवा, महाराज, भाईकोन, अमल, बिमल, रेकी, वेलिक, नारायण, अंकित, विक्रम। जी हाँ, आप सभी सभी के नाम करना चाहूंगी इस गीत को। और हम उम्मीद करते हैं आप सभी इस वक्त सुन रहे होंगे। ललदिनपुर एफएल कॉन्वेंग लाइव की तरफ से है, दिखते हमें अर्जी प्ले ले तुरखा नंगमा ताने लौंगाई थसोंग जोंग ताने पापा रिपू कुंग ते आ मेंग मोई ते आ के वाला तुई कुआल मी तान ललदिनपुर फल कौन वेंग लाई है नरों तीन इचु मोय मुन के पुई की तरफ से हेली तार जा मोय ते लोले ले तामो में का सांगते लल हित सांगते आ लल हिता नाक ते पा चो या पाई जाओ के ngai te te tan le itan ron te ban lo mom thin tak em o i khan sak zong song te khan lo ngai kha ko vek ka be se o omega sang te o a o tunar je duty hi cho ron te le nga ba han sweet thin tak em play le tour rj la ho ve lo bis tin in tan liao liao ron te set up o ngai tha thang ti chat le tok lo mom nu tok o visit ipon lo ngai thang e ni oi la kha हेला ही अता निरंथन सका। और अगला जो गीत है वो भी त्रो ओमेगा कसई सवाल लो तुरंगायंग। तो अगला गीत जो मैं पेश करने जा रही हूँ बर्फी फिल्म का गीत है फिर ले आया दिल। और ये जो गीत है हम उन सभी सभी के नाम करना चाहते हैं जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं और जिन्होंने अपने प्यारे दोस्तों के नाम लिए हैं, आप सभी के नाम अर्पित किए हैं, तो आप सभी के नाम करना चाहूंगी। तो चलिए गीत सुनते हैं बर्फी फिल्म का ये।

तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर। जो गीत सुना है आपने, बर्फी फिल्म का गीत था, फिर ले आया दिल। चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जो कि है आई एम कलाम फिल्म का एक गीत सुना रही हूँ आपको। मानसी मानवी, स्नेहा रचिता, हितनाश और कोरस। जी हाँ, गीत का टाइटल है चांद तारे, और साथ में ही संदेश आया है लल दिन पुया फल कौन की तरफ से। ये लिखते हैं हमें आज एक ले तो खाना माता ने लो, मतलब वे जोंग जोंग ताने और जे जोंग जोंग ताने का ठियां ते वेंग शंग शंग में दी अमी दे ताने रंग देने दिन पुया ठियां ते खान कंधों में ठाक पे ऐसे ओ दिया लम को जेल सा महीन आर्जे हो इतने पर पारी पू दिया लम खा लम लो मामा ओ ए अच्छा दिया लो पार पारी पू अधिकम नेक्स्ट तो नेक्स्ट सॉन्ग का पार पारी पू मारते पाबे को थीले मोइते तान पो और ते दिन पुंग तो मई म्या लव इन थ्वांग तकिन और ते न मई थे लव शिम शिम ते खा खच चियांग सा ने टॉप में ने तो ये जो गीत है जेल सा मले थ्यान ते जोंग जोंग ते ले ओ दिन पुया फलकोन ले थ्यान ते जोंग जोंग ता का न मिन का न तो ये जो गीत है चांद तारे।

जी दोस्तों, गीत सुन रहे हैं आप एम कलाम फिल्म का गीत चांद तारे। बढ़ते अगले गीत की ओर। हितेंद्र दास ने जिस गीत को सुनने की ख्वाहिश की थी, चलिए सुनते हैं ये गीत। और गीत का टाइटल है मन बसिया तेरे नाम, फिल्म का गीत है ये।

दोस्तों ये थी तेरे नाम फिल्म का गीत मन बसिया। हितेंद्र दास ने भी हमें धन्यवाद दिया है। द मोस्ट मोस्ट मोस्ट वेलकम हितेंद्र दास। बढ़ते हमारे अगले गीत की ओर। हमारा जो अगला गीत मैं पेश करने जा रही हूँ, हमारे आरजे बीजरी को शायद ये गीत बहुत बहुत ही पसंद है, इसलिए इस गीत को उनके नाम करना चाहूंगी। सनम पुरी के बहुत बहुत ही सुंदर आवाज में है ये, कुछ ना कहो शर्ली शेठिया के साथ गाया है इन्होंने इस गीत को बहुत बहुत ही सुंदर अंदाज में।

कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। जी हाँ, सनम पुरी और शर्ली शेट्टिया की आवाजों में थी, और ये है फिल्म 1942 लव स्टोरी का। बहुत बहुत ही सुंदर आवाज अंदाज में इसको नए तरीके से दर्शाया गया है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर। ये जो गीत है दोस्तों, बहुत बहुत ही मैं क्या कहूँ, कहते हैं ना ऑल दिस गोल्ड। हाँ, तो मैं ये गीत सुना रही हूँ आपको, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत है। और इस गीत के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरे जाने का वक्त आने ही वाला है, मतलब आ ही गया है। तो आप सुन रहे हैं FM 107.7। इस वक्त आप अपना वक्त बिता रहे हैं अपनी आरजे अमोईती के साथ। तो जाते जाते एक और गीत जरूर आपको सुना कर जाऊंगी। इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज है ने गाया था इस गीत को, और हमको उम्मीद है ये भी आपको जरूर जरूर पसंद आएगा। मिंग मोइते का संदेश है जो कि हमें लिखते हैं, आ मोइते मंगठाले रंतिया निये तेरो, मिंग मोइते एक दिगाए कहीं मुंह तीर चाहते तो सी लो तेरो। अगर भगवान ने चाहा तो अगले हफ्ते के थर्सडे को हम वापस आएंगे बहुत बहुत ही सुंदर गीतों के साथ। तो अपना सेहत का ख्याल रखिएगा, ताकि आपसे जब हमारी बात हो तो आप सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। और मैं मोइते पो ले ओ विकुंग ते पो लो दमन्ये कभी से। ओ चौने जाते जाते जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, बहुत बहुत ही प्यारा गीत है। जिस तरह से हमने कहा था आपको, अपना अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और इस गीत को मैं अर्पित करना चाहूंगी हमारे सभी श्रोताओं को, जो इस वक्त कोई ड्यूटीज में भी होंगे और कोई सफर में भी होंगे, आप सभी सभी के नाम। और कोई तो हाँ बिस्तर में है, और कोई तो इस वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहे होंगे। जानिन चु तुते मुटन चंग तुते मुटन खान चकलो दो नी ओ कॉम्पिटिशन हे वन सांग थीन तक एम तिरो अहुन लाइन या ओ थे तो पिन एन मई तुर। तो जाने से पहले आइए से गीत आप सभी सभी के नाम। तो अलविदा लेती है आपकी आरजे आप मोहिती आप सभी से इस गीत के साथ। शुभ रात्रि, उठावे कुले।